आज के कार्यक्रम में पेश करूंगा आपके लिए आशा भोसले जी के गाए हुए कुछ गीत आपकी पसंद के और कुछ मेरी पसंद के। हम श्रद्धांजलि देंगे विक्रम बत्रा परमवीर चक्र विजेता को। गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो खेती में तो काम करते थे लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी, उनके नेता विनोबा भावे जी को याद करेंगे। और क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी लाला अमरनाथ जी को जरूर हम आज श्रद्धांजलि देंगे। अपनी पसंद हम तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02981627 02981627। बताइए कौन सी है आपकी फरमाइश, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका गाना आप तक लाने की। कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा ऑनलाइन सुन सकते हैं www.rrr.org.au लिसन ऑनलाइन प्ले बटन। अपने मोबाइल पर भी इसी तरह से या फिर एक मुफ्त ऐप डाउनलोड कीजिए अपने फेवरेट मनचाहे ऐप स्टोर से। ऐप का नाम है कम्युनिटी रेडियो प्लस। कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल के साथ, जो आजकल सबका दोस्त बन गया है, कहीं भी हो पूरी दुनिया में आप सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक।

आशा भोंसले। दीनानाथ मंगेशकर जी के घर पैदा हुई, पिता थिएटर एक्टर क्लासिकल गायक थे। 10 वर्ष की आयु थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और वो और उनकी बहन लता जी अपने परिवार को पालन करने के लिए काम करने लगे। फिल्मों में गाना शुरू किया और 1943 में आशा भोंसले जी को मराठी फिल्म माझा बल के लिए गाना मिला, चल चल नवबाला। हिंदी फिल्म जो उनको पहली मिली वो थी चुनरिया 1948, सावन आया था गाना। और उनके बारे में और बहुत सी बातें हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इस गाने के बाद। जी हाँ, ये गाना कौन सा है आपको बता दूं कि ये गाना जो आपके लिए मैं उनकी लेकर आया हूँ, वो उन्होंने जो है एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, उसमें ये उन्होंने गाना गाया था और बहुत ही चला था ये गाना। और गाना है, गाने के बोल हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।

16 वर्ष की उम्र में 1949 में गणपत राव भोसले के साथ उन्होंने भागकर शादी की। शादी नहीं चली। 1960 में दो बच्चों को लेकर गर्भवती आशा नाना नानी के घर आ गई। गुजारे के लिए फिल्मों में गीत गाती रही, लेकिन गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता जी के होते उनको काम मिलना आसान नहीं था। इन तीनों का मना किया हुआ काम ही आशा जी को मिलता। और ये गाना जो अभी आपने सुना, 1954 में राज कपूर साहब ने रफ़ी जी के साथ उनको मौका दिया इस गाने का, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, फिल्म थी बूट पॉलिश। और फिर उन्होंने उनको एक और मौका मिला जिसमें उन्होंने एक और बच्चों का और देश प्रेम का गाना गाया, और हेमंत कुमार जी ने इसमें संगीत दिया था गाने का। और इस गाने के बोल हैं, ओ साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत ही प्यारा गाना है, और इसे सुनते हुए 0298162777 हमारा नंबर यहाँ स्टूडियो में।

फिर आशा भोसले जी का साथ हुआ ओपी नैयर साहब के साथ। ओपी नैयर साहब के साथ होने के बाद उनको एक से एक बढ़कर अच्छे अच्छे गाने मिलने लगे और एक से एक बढ़कर सुपरहिट गाने मिले उनको, जिससे उनकी ख्याति बहुत ही बढ़ गई। ऐसा ही एक गाना है फिल्म ओपी नैयर के संगीत में, फिल्म हावड़ा ब्रिज का। सुनते ही आप समझ जाएंगे मैं इस गाने के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूं।

0: 2:19 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का। कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा आशा भोसले जी के गाने लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर। और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाने का। नंबर है 02981622777 02981622777 और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका गाना आप तक लाने की। आप सुन रहे हैं महक 2RRR 88.5 FM पर जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। हमारा ईमेल है mahakradio@yahoo.com mahakradio@yahoo.com। इस पर भी आप अपने विचार अपनी सुझाव और अपनी फरमाइश भेज सकते हैं।
1: A simple act of kindness can help someone escape abuse and start a new life. Station sponsor, North Ryde RSL, has teamed up with Escabags, a charity providing emergency bags to survivors of domestic violence. And you can also help. On your next supermarket run, grab an extra non-perishable or two and drop them in the donation box at the North Ryde RSL reception. Together, we can build safer futures. The North Ryde RSL, where community is our focus.
2: And don't forget, mark your calendar for the Make a Stand Walk on November 25th from 8:30 a.m.
3: Come one, come all. Yes, our Hunters Hill Council's annual Mookaboola Festival is on again, and it's going to be bigger and brighter than ever. Featuring popular rides we have come to love over the years, there'll also be the usual vast range of enticing food stalls, exciting entertainment and live music to set you rocking. Of course, we must never forget the always popular dog show. So note the date now in your diary of choice and come. It's all happening on Sunday the 27th of September between 10 a.m. and 4 p.m. in our Baronia Park Ovals 1 and 2, located at the corner of Park and Ride Roads, Hunters Hill. For more information, search 2026 Mookaboola Festival or phone 9879 9400 at Hunters Hill Council.
4: Major Gregory Keane of MI5 returns in an exciting new serial, 26 Hours, on Thursday mornings at 11:30 on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर अपने मनपसंद कार्यक्रम महक में। और ओपी नैयर साहब ने उनको एक और फिल्म थी CID उसमें मौका दिया और क्या गाना था, बहुत ही सुपर हिट गाना था अपने समय में भी और आजकल भी बहुत प्यार से इसे लोग सुनते हैं और विजय ने पसंद किया है ये गाना फिल्म CID का।

और आजकल भारत में खास तौर से दिल्ली में जो वहाँ पे एक एग्जीबिशन ग्राउंड है भारत मंडपम, उसमें हो रहा है ब्रिक्स का सम्मेलन 12 सितंबर से शुरू, यानी कल से शुरू। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के ग्रुप का ये जो है एक समिट हो रहा है, और अब इसमें कुछ और देश भी मिल गए हैं और अब कुल 11 देश हैं ब्रिक्स में। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान खास मेहमान हैं इस बार, और सबके साथ खूब अच्छी बातचीत हो रही है भारत की। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से अलग से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान के साथ अलग से बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुख्य चर्चा हुई डॉलर की जगह लोकल करेंसी से सिस्टम चलाया जाए। आपको मालूम ही होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलर्स में होता है, वो भी यूएस डॉलर्स में, और ब्रिक्स की कोशिश है कि डॉलर को रिप्लेस किया जाए लोकल करेंसी से, डॉलर की वैश्विक धाक को ख़त्म करने का काम शायद शुरू हो गया है। भारत से ईरान रुपए लेगा और रुपए में तेल बेचेगा, रूस रुपए लेगा और रुपए में तेल बेचेगा, और पहलगाम हमले की निंदा की ब्रिक्स देशों ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, इस ब्रिक्स के रोड मैप में 3 मुख्य पहलू हैं, प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करना, कलेक्टिव रिस्पांस स्पीड बढ़ाना, स्केल और लास्ट माइल स्टोन पर ध्यान देना होगा, भविष्य का रूट तय करने में समान भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि सारे देश बराबर होने चाहिए, और हम भी यही कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि आप की फरमाइश जो है वो सबसे आगे है, जैसे कि ये फरमाइशी गाना फिल्म है कश्मीर की कली, रफ़ी साहब की बेहतरीन आवाज़ है इस गाने में, और इस फरमाइशी गाने को सुनते हुए आप भी हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं महक 888.5 FM पर, mahakradio@yahoo.com पर, MAHAKRADIO mahakradio@yahoo.com, या फिर स्टूडियो में फ़ोन करके 02981622777 पर।

आप सुन रहे हैं महक 88.5 FM पर आज 13 सितंबर के इस कार्यक्रम में आशा भोसले जी के गाए हुए कुछ गीत। विनोबा भावे। जन्म हुआ गांगो जी गांव कोलाबा कोनकान में 11 सितंबर 1895 को। महात्मा गांधी जी से संपर्क किया 7 जून 1916 को। उनसे मिलकर कोहराब आश्रम अहमदाबाद में रहने लगे। आश्रम के सभी कामों में भाग लेने लगे। बचपन से ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने की आदत थी और जो उन्होंने जीवन भर निभाया। 1918 में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। महात्मा गांधी जी के काम और भाषणों से प्रभावित होकर 1921 में वर्धा में गांधी जी के कहने पर वहां का आश्रम संभाला। 1923 में महाराष्ट्र धर्म नामक पत्रिका शुरू की। 1920 से 30 तक एक दशक में कई बार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जेल में साथी कैदियों को मराठी में गीता पर प्रवचन दिए। ईश्वर वृत्ति और स्थिति तप रंजन दर्शन नामक की किताबें लिखी। 80 हरिजन परिवारों को उन्होंने संपर्क में आने के बाद उनकी मदद की। 18 अप्रैल 1951 को इन 80 हरिजन परिवारों के संपर्क में आने के बाद पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसके लिए वो मशहूर हुए और पूरा जीवन भर उस पर काम करते रहे। आज़ादी के बाद पूरे भारत में पैदल चलकर लोगों से अपनी ज़मीन का छठा भाग, यानी अगर आपके पास 6 एकड़ हैं तो 1 एकड़ दान करने के लिए कहा, जिससे गांव के हरिजनों में वो बांट देते थे। हरिजनों को जो पहले ही खेती में तो लगे हुए थे लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। चाहे पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने मराठी कन्नड़ गुजराती हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में किताबें पढ़ी और लिखी। कन्नड़ लिपि को विश्व लिपिगल रानी क्वीन ऑफ वर्ल्ड स्क्रिप्ट्स का नाम दिया विनोबा भावे जी ने। भगवद गीता का मराठी में अनुवाद किया। किताबें लिखी द एसेंस ऑफ कुरान, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग्स, थॉट्स ऑन एजुकेशन, स्वराज्य शास्त्र। हजारीबाग झारखंड में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी उनके सम्मान में बनाई गई है। जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर पोनार वर्धा में बिताए। 15 नवंबर 1982 को कई दिन पहले से खाना पीना छोड़ने के बाद उनका देहांत हो गया। 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय व्यक्ति थे। 1983 में मरने के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 15 नवंबर 1982 को उनकी मृत्यु हुई। और ये थी कुछ बातें विनोबा भावे जी के बारे में। उम्मीद है इससे कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। और हम अब चल रहे हैं फरमाइशी गानों की ओर। और आशा पाने वाले वो पहले भारतीय व्यक्ति थे। 1983 में मरने के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 15 नवंबर 1982 को उनकी मृत्यु हुई। और ये थी कुछ बातें विनोबा भावे जी के बारे में। उम्मीद है इससे

बहुत ही प्यारा गाना रफ़ी साहब के साथ था और मैं कोशिश करता हूँ कि ये गाना आपके लिए पेश कर सकूँ। और बहुत ही प्यारे गाने थे वैसे तो, गुमराह फिल्म के सारे ही प्यारे प्यारे गाने थे। और जो ये गाना आपके लिए पेश कर रहा हूँ आशा भोसले जी की आवाज़ में, इसे फिल्माया गया था माला सिन्हा जी पर और बहुत ही प्यारा ये है गाना।

10 सितंबर जनसत्ता समाचार पत्र में ये समाचार आया कि उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल पर रिपोर्ट दायर करने के लिए पत्रकार अमित यादव वहां गए, देखा वहां के शौचालयों का बुरा हाल है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, कई बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। ये सब अमित यादव ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया। नतीजा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। एफआईआर आप समझते ही हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पुलिस में दर्ज की जाती है किसी गुनाह पर, किसी अपराध पर। उसने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाईकोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाते हुए कहा, स्कूल की कमियां सामने लाने वाले पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ऐसा है जैसे गलती सुधारने की बजाय उसे उजागर करने वाले व्यक्ति को ही निशाना बनाया जाए। शूट द मैसेंजर या किलिंग द मैसेंजर। अधिकारियों को इस रिपोर्ट को स्कूल की व्यवस्था सुधारने के अवसर के तौर पर देखना चाहिए था, न कि इसे प्रतिष्ठा या अहम यानी ईगो का मुद्दा बनाकर पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी और बदले की भावना से काम करना चाहिए था। मेरा विचार, कम से कम हाईकोर्ट तो न्याय का पक्ष लेती दिखाई दे रही है, लेकिन हम हमेशा आपका पक्ष लेते हैं और आपकी फरमाइश सुनाते हैं। जैसे कि ये अगला गाना जो है, इस राज कपूर साहब ने मौका दिया था इस फिल्म में आशा भोसले जी को, फिल्म थी श्री 420, और क्या गाना है, आप सुनते ही पहचान जाएंगे, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के।

पीवीसी हिंदी 8 सितंबर सिंगापुर में सोशल मीडिया पर नेपाल की भयंकर बाढ़ और एयर इंडिया को लेकर सिंगापुर में भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी कमेंट सामने आए हैं। सिंगापुर के होम मिनिस्टर के शानमुगम ने पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लूंग और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ मिलकर इन कमेंट्स का विरोध किया और इन्हें शर्मनाक बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और निर्णायक निडर फैसला सामने आया है हिंदुस्तान टाइम्स के 8 सितंबर के एडिशन में। नोएडा की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आकृति चौधरी को एनएसए के अधीन अप्रैल 2026 में नोएडा वर्कर्स जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें शामिल होने के लिए गिरफ्तार करने के आदेश दिए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेधा रूपम के आदेशों को एक मनगढ़ंत कहानी के आधार पर दिया गया बताया है। बेलगाम ताकत का दुरुपयोग बताया है और लेखक जॉर्ज ऑरवेल, आपको मालूम ही होगा जॉर्ज ऑरवेल साहब ने किताब लिखी थी एनिमल फार्म और ये 1940 के दशक में शायद लिखी थी और इसमें बताया था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जॉर्ज ऑरवेल की इस किताब एनिमल फार्म का संदर्भ दिया और अपने फैसले में कहा it shan't be long before the errant in the bureaucracy reduce the state of Uttar Pradesh to an Orwellian dystopia, yani zyada der nahi lagegi Uttar Pradesh ko ye jo ब्यूरोक्रेसी है वहाँ की वो ऑरवेलियन डिस्टोपिया यानी जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में लिखा है एनिमल फार्म, वैसा बनाने में देर लगेगी। मेरा विचार इस बारे में, मुझे लगता है कि ये स्थिति उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आज दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि नहीं? हमें ये लगता है कि अगला गाना जो कि एक फरमाइशी गाना है और जिसको पसंद किया है राज ने, वो पेश करना हमारी हमारी खुशी है और हमें मौका मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है देव आनंद साहब की फिल्म जिसके इस गाने को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी साहब ने और फिल्म है 9-2-11। बोल है आजा पंछी अकेला है।

0: एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस बीते सप्ताह जिसकी रिपोर्टिंग हुई है जनसत्ता समाचार पत्र में 11 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताई और पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश में ऐसा करने से मना किया था तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऐसा कैसे किया, क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये किया कि अक्षत त्रिपाठी नाम के एक स्टूडेंट को नोटिस जारी किया कि उन पर कार्रवाई की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20 जुलाई के जो जंतर मंतर पर कार्रवाई हुई थी उसमें किसी पर केस न किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बारे में अदालत को बताया कि उस एग्जीक्यूटिव मैनेजर को, माफ कीजिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है, या तो ये जो जज मैजिस्ट्रेट वगैरह बैठे हैं इनको कानून की जानकारी नहीं है, या किसी दबाव में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये सुनिए, बहुत ही एक अजीब सी खबर है जनसत्ता समाचार पत्र में 8 सितंबर को ये आया समाचार। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो एक गुरु हैं धार्मिक, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया कि दुर्गा पूजा के दौरान मांस मछली न पकाए न खाएं, और ऐसा करने वालों को पाखंडी तक कह दिया। वेस्ट बंगाल के बारे में वो बात कर रहे थे। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के ही अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने जवाब में कहा कि बंगाल के लोगों के खान पान और पहनावे को लेकर कोई व्यक्ति, साधु या राजनीतिक दल को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या खाए या क्या पहने। वाह वाह, क्या बात है। और मेरा विचार इस बारे में, जैसा मैंने कहा, वाह वाह क्या बात है, पर मेरा एक सवाल है कि क्या ये बात जो बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कही कि बंगाल के लोगों के बारे में, बंगाल के लोगों को क्या खाना है क्या पहनना है उसके अधिकार किसी दूसरे को नहीं है, उन्हीं का है, तो क्या ये बात उनके लिए नहीं लागू होती, यानी मुसलमानों के लिए, जब ऐसा कहा जाता है कि वो ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, तो केवल क्या वेस्ट बंगाल के हिंदुओं के लिए ही ये बात लागू होती है? मेरे को समझ नहीं आता, मेरा तो ये सवाल है। आपको अगर जवाब मालूम हो, आपका विचार कुछ हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 02981622777 पे। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है महक MAHAK, उसके आप सदस्य बनना चाहें तो बहुत ही आसान है। कार्यक्रम के समय फ़ोन कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, आपको हम उसमें शामिल कर लेंगे। इसमें शामिल होकर आपको महक में क्या हो रहा है, महक की जानकारी, महक की बातें, अपनी फरमाइश भी वहाँ दे सकते हैं और अपनी सुझाव भी वहाँ दे सकते हैं। कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के हम बहुत आभारी हैं कि वो हमारी मदद करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही हमारे जैसे कार्यक्रम जो हैं ऑन एयर जा सकते हैं। और अब समय है कुछ संदेशों का, संदेशों के बाद जारी रहेगा आशा भोसले जी के गानों का कार्यक्रम।
1: हाय, आई एम इगोर लिखोरोविच ऑफ टेक केयर ऑफ बुक्स। We're proud accountants and sponsors of Wright Regional Radio Cooperative Limited and to many other non-for-profit organizations across Sydney. Our specialty and service excellence is in understanding and delivering acute and compliant financial accounting needs of community organizations.
2: Thanks, Igor. Take Care of Books works excellently with not-for-profit organizations covering all financial accounting needs. To arrange a free initial consultation, go to takecareofbooks.com.au.
1: We will be proud to serve you as we are of 2RRR.
3: The Happy
2: Happy Hens would be so happy to invite you to scratch your way around their wonderful Henley Green Community Garden. And you know what? With the support of our Hunters Hill Council, this amazing community garden could just be the social activity you need right now to simply egg you on to a new high. The address is 2A Crown Street, Henley. For days, times and more information, search happyhens.org.au or telephone 0403 822 099.
3: We interrupt our program to bring you this important message.
4: If you love listening to 2RRR, you should join the community and become a member. 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of broadcasting and supports 2RRR to stay on air. Download an application at 2RRR.org.au or phone us on 9816 2988 for more information. Let your voice be part of your local sound. 2RRR.
5: Part of Bendigo Bank, Community Bank Homebush and North Ryde invest in community outcomes. Radio 2RRR is dedicated to working with local youth through the broadcasting medium, as well as to assist adults who are on their rehabilitation journey. Without the significant support from the Community Bank Homebush and North Ryde, this initiative simply would not be possible.
6: Support the bank that supports your community. Call, email or visit station sponsor Community Bank Homebush and North Ryde, part of Bendigo Bank, the better big bank.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है महक 2RRR 88.5 FM पर एक बार फिर क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी लाला अमरनाथ 11 सितंबर 1911 को उनका जन्म हुआ कपूरथला पंजाब में लाला अमरनाथ भारद्वाज उनका नाम परवरिश हुई लाहौर में अजमल राणा और शफकत राणा के परिवार में 1933 में बॉम्बे जिमखाना में इंग्लैंड के विरुद्ध पहला मैच खेला उन्होंने 1936 में इंग्लैंड के दूर से कप्तान महाराज कुमार विजयनगरम जो भारत में एक शहर है ने अनुशासनहीनता इनडिसिप्लिन के आरोप में उन्हें वापस भारत भेज दिया लाला अमरनाथ और कुछ लोगों का मानना था कि राजनीति के कारण ऐसा किया गया कथित तौर पर पीठ के चोट के बावजूद कैप्टन विजी ने लाला अमरनाथ को पैडअप कराकर सारा दिन बिठाई रखा और दिन खत्म होने पर ही बैटिंग के लिए भेजा लाला अमरनाथ को पीठ की चोट के आराम देने का मौका ही नहीं मिला लाला अमरनाथ ने ड्रेसिंग रूम में गुस्से में बैट पटक दिया उसे भारत वापस भेज दिया गया आज़ाद भारत की क्रिकेट टीम के लाला अमरनाथ पहले कैप्टन बने 1952 में पाकिस्तान के साथ पहले टेस्ट में जीत प्राप्त की अपनी सद्भावना और सीधी बात के अंदाज के लिए वो जाने जाते थे बंटवारे के जहर को खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों में काम करने और दोस्ती बढ़ाने के लिए उनका नाम था वो आज़ाद भारत के लिए सेंचुरी बनाने वाले भी पहले क्रिकेटर थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लाला अमरनाथ ने 10,426 रन बनाए ये थी कुछ बातें लाला अमरनाथ जी के बारे में भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी उम्मीद है इससे जानकारी कुछ जो आपको प्राप्त हुई होगी उसके लिए वो आपके किसी आपको उससे कुछ जानकारी जो है अच्छी प्राप्त हुई होगी तो आइए चलें अगले गाने की ओर आशा भोसले जी के गानों के इस कार्यक्रम में और अगला गाना एक फरमाइशी गाना है और ये गाना है फिल्म किस्मत का बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये विश्वजीत जी की और बबीता जी की और इसके गाने तकरीबन तो सारे ही अच्छे थे लेकिन ये फरमाइशी गाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा है

आप सुन रहे हैं महक 88.5 FM पर अपना मनपसंद कार्यक्रम महक जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार दो से चार बजे तक पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अपनी पसंद यहां स्टूडियो में पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान है, नंबर है 02981622777। और अब आशा भोसले जी के गानों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं

कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता, जन्म हुआ 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश में। पिता गिरधारी लाल बत्रा, स्कूल के प्रिंसिपल, माँ कमल कांता बत्रा, स्कूल टीचर। डीएवी पब्लिक स्कूल और सेंट्रल स्कूल पालमपुर में शिक्षा प्राप्त की, स्पोर्ट्स में भाग लिया, यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन जीते, दिल्ली में नेशनल लेवल तक खेले, कराटे में ग्रीन बेल्ट और मनाली में नेशनल लेवल ग्रुप में भाग लिया। डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में बीएससी मेडिकल की पढ़ाई की। एनसीसी, जो आप जानते हैं भारत में एक नेशनल कैडेट कोर है जो कि कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती है आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की। एनसीसी में वो उन्होंने एयर विंग चुनी, बेस्ट एनसीसी एयर विंग कैडेट चुने गए। 40 दिनों का पैरा ट्रूपिंग का कोर्स किया पिंजौर में, फिर 2 साल एनसीसी आर्मी विंग में काम किया और 1994 में एनसीसी कैडेट के तौर पर रिपब्लिक डे परेड में चुने गए। घर आकर कहा फौज में जाऊंगा। 1995 में ग्रेजुएशन पास की, 1996 में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम पास किया, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की इंटरव्यू दी, चुने गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 19 महीने के कोर्स के लिए, जिसे उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को पूरा किया और 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में पोस्टिंग हुई लेफ्टिनेंट के पद पर। और आतंकवादियों के साथ मुकाबले में उन्हें एक गोली कंधे के पास से गुजरती हुई पीछे खड़े सैनिक पर लगी जिसकी मृत्यु हो गई। ये गोली मेरे लिए थी, ऐसा कहा विक्रम बत्रा ने। आतंकियों पर भारी गोलाबारी की और उन्हें ख़त्म किया। और बहुत सी अन्य लड़ाइयों में, अन्य एक्शन में उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया। और जनरल वेद प्रकाश मलिक ने एक ऐसी मुहिम के लिए स्वयं लेफ्टिनेंट बत्रा को मुबारकबाद दी थी, उन्हें कैप्टन का प्रमोशन दिया गया। 30 जून को उनकी बटालियन मशको वैली के लिए रवाना हुई। मशको घाटी की चोटी .4875 दुश्मन के कब्जे में थी, जहां उन्हें भारत की सेना की हर बात नज़र आती थी और 40 से 50 किलोमीटर की सड़क पर उनकी पूरी जानकारी थी। .4875 पर ए और सी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया, लेकिन पास के जो एक नॉर्थ ऑफ .4875 था वो अभी भी खतरा बना हुआ था। एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा मुश्किल हो रहा था दुश्मन के हमले के कारण। कैप्टन बत्रा जो बीमार थे, 7 जुलाई 1999 को ये सब देख रहे थे। उन्होंने बीमारी की हालत में वॉलंटियर किया ऑपरेशन अटैक के लिए। 25 और साथियों के ने भी वॉलंटियर किया उनके साथ। दुर्गा माता के मंदिर में पूजा के बाद डेल्टा कॉरपोरेशन ने कैप्टन बत्रा के कोड नेम शेर शाह के अधीन प्रस्थान किया। बेस कमांडर ने फ्लैट टॉप के संदेश भेजा, शेर शाह अपने शेर शाह के आने तक स्थिति पर काबू रखो, जिसे लेज से, जो एक किनारा होता है टीले का, लेज से दुश्मन की फायरिंग आ रही थी, उस पर दाईं या बाईं ओर से हमला नहीं हो सकता था। कैप्टन बत्रा ने साथियों के साथ सामने से हमला किया। दुर्गा माता की जय बोलते हुए कैप्टन बत्रा ने AK-47 से लगातार फायरिंग करते हुए हमला किया। घायल होने के बावजूद साथियों की कवरिंग फायर के साथ उसके सहारे दुश्मन के मोर्चे के दरवाजे तक पहुंच गए। दुश्मन की हैरानी के बीच
हैंड टू हैंड लड़ाई लड़ी और उसमें 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। फिर मशीन गन पोस्ट पर हमला किया अकेले कैप्टन बत्रा ने। वो ये मशीन गन पोस्ट भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ रही थी। पोस्ट के चारों दुश्मन सैनिकों को उन्होंने मार दिया। एक घायल साथी सैनिक को खतरे से बचाने के लिए सूबेदार रघुनाथ सिंह की मदद से उन्होंने दुश्मन को पर फायरिंग की। कैप्टन बत्रा की छाती में भी गोली लगी दुश्मन की। फिर एक आरपीजी का टुकड़ा सर में लगा। घातक चोटों के कारण कैप्टन बत्रा वहीं शहीद हो गए। 15 अगस्त 1999 मरने उपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के आर नारायणन के हाथों से ये सम्मान उनके पिता ने स्वीकार किया। उनके सम्मान में जबलपुर कैंटोनमेंट में कैप्टन विक्रम बत्रा एनक्लेव बनाया गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जहां उन्होंने ट्रेनिंग ली और दूसरे जो कैडेट हैं ट्रेनिंग लेते हैं वहां विक्रम बत्रा मेस बनाया गया। गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर अब शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक बनाया गया। पालमपुर में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा स्टेडियम बनाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की शूटिंग रेंज का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शूटिंग रेंज रखा गया। 26 जुलाई 2022 को तिरुवंतापुरम केरला में एक स्विमिंग पूल में संसार का सबसे बड़ा अंडर वाटर तस्वीर रिकॉर्ड की गई कैप्टन बत्रा की यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम द्वारा। पराक्रम दिवस पर भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीपों में 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र 21 विजेताओं के नामों पर रखे। विक्रम बत्रा के सम्मान में भी एक द्वीप का नाम रखा गया बत्रा आइलैंड।

और अब जो गाने आपके लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ आशा भोसले जी के, वो हैं उनके फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग गाने 1968, 10 लाख फिल्म आई, उसका गाना गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल सिंगर 1968 का अवार्ड गया इस गाने के लिए आशा भोसले जी को।

और अगले ही साल 1969 में आशा जी को एक और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और गाना था पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ और अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था धर्मेंद्र साहब के साथ आशा पारेख जी की ये थी फिल्म और पेश है आपके लिए ये बेहतरीन गाना महक टूटे पलार 88.5 FM पर

और फिर आया 1972 में एक बार फिर फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला किसको आशा भोसले जी को गाना था फिल्म कारवां का पिया तू अब तो आजा और ये गाना फिल्माया गया था हेलन जी पे और अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था तो पेश है आपके लिए पिया तू अब तो आजा

और अगले साल 1973 में फिल्म आई हरे राम हरे कृष्णा, उसमें था गाना दम मारो दम, और इस गाने के लिए भी आशा भोसले जी को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया।

और अगले ही साल 72-73 और फिर 1974 में उन्होंने एक गाना दिया, फिल्म थी नैना और गाने के बोल थे होने लगा होने लगी है रात, और इस गाने के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया।

और फिर 1975 में एक बार फिर चार साल लगातार यानी उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया फिल्म फेयर वालों ने, और फिल्म थी प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत ही प्यारी फिल्म भी थी और बहुत ही प्यारा ये गाना।

ये मेरा दिल बहुत ही प्रचलित हुआ था ये गाना, और आज भी सुनने को जब मिलता है तो अत्यंत ही अच्छा लगता है।

और फिर आई फिल्म डॉन, और फिल्म डॉन के इस गाने के लिए भी 1979 में उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड से नवाजा गया, और डॉन फिल्म का ये गाना था।

जनसत्ता समाचार पत्र 8 सितंबर को ये समाचार आया कि कर्नाटक के पद्मश्री सम्मानित हरे कला हजप्पा, ये उनका नाम है हरे कला हजप्पा, ने गांव में स्कूल स्थापित किया था जिसके लिए उन्होंने केवल जो वो संतरे बेचकर गुजारा करते थे उसी में से पैसे निकालकर स्थापित किया था। लेकिन और इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था, जैसे मैंने बताया, पद्मश्री का। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो आजकल चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग जो वोटिंग लिस्ट है उसको इंटेंसिव रिव्यू किया जाता है और लोगों को उसमें से हटा दिया जाता है या उनको नोटिस भेजा जाता है कि वो साबित करें कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट से क्यों नहीं हटाना चाहिए। तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उनको डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए 11 सितंबर तक की तारीख दी गई, साबित करने के लिए कि वो जायज वोटर हैं। जिसको आप सोचिए पद्मश्री मिला है वो जायज वोटर नहीं है, क्या बात है। और वुमेन्स एशिया कप जो हो रहा है उसमें भारत की धाक, मैच में भारत की शेफाली शर्मा के आउट होने के बाद पाकिस्तान कैप्टन फातिमा ने शेफाली को पवेलियन की ओर जाने का इशारा किया, जो नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है और अपमानजनक भी माना जाता है। खेल के चारों अंपायर्स ने इस पर शिकायत की और फातिमा पर ICC ने मैच फीस के 10% का जुर्माना और 11 पॉइंट भी उनके डिमेरिट का जोड़ दिया उनके लिए। और विमेंस एशिया कप की ही समाचार है कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच गई है और आज रात 12:30 बजे मैच शुरू होगा यहाँ के टाइम के मुताबिक, क्योंकि मैच हो रहा है दुबई में और भारत और श्रीलंका के बीच ये फाइनल मैच खेला जाएगा। और फिल्मी दुनिया के समाचारों में हैवान फिल्म रिलीज हुई है इस बीते शुक्रवार को। सैफ अली खान और अक्षय कुमार की ये फिल्म है और वो KBC पर भी आए थे फिल्म की मशहूरी करने के लिए और फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन और प्रोड्यूसर भी आए थे। और कथित तौर पर अक्षय कुमार इस फिल्म में विलेन का रोल कर रहे हैं और सैफ अली खान हीरो का रोल कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर 2 जो पिछले हफ्ते आई थी, धमाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर, 200 करोड़ पार कर चुकी है। 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। करीना कपूर, कंवलजीत, अचित कौर, पृथ्वीराज, सुकुमारन की फिल्म। और हमारी जन्मभूमि की बातें तो हमारी कुछ इधर की कुछ उधर की। KBC के एक एपिसोड में एक सवाल में जो सामने आया, मैरी कॉम अपने शुरू के दिनों में गरीबी के कारण मीलों दूर ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और पैसे न होने के कारण वो बस वगैरह नहीं ले सकती थी, तो कई ट्रक ड्राइवर्स ने उसकी मदद की। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद मैरी कॉम ने उन्हीं ट्रक ड्राइवर्स का धन्यवाद करते हुए उनके पैर छुए। नासा, नेशनल जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, नासा ने इसरो को, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, आर्टिमिस प्रोग्राम में, मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अमरीकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने इसरो और अन्य एजेंसीज के बंगलुरु स्पेस एक्सपो में बोलते हुए ये बात कही। एक एविएशन कंपनी ने अभिनेत्री नोरा फतेही पर 3 करोड़ रुपए का केस कर दिया है क्योंकि उस कंपनी के मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट जो अभिनेत्री नोरा फतेही ने की थी उसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में गड़बा डांडिया उत्सव मशहूर है और इन उत्सवों में इस साल मुस्लिम लोगों को बैन कर दिया गया है और वहाँ महाराष्ट्र के CM चीफ मिनिस्टर की ही पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, उसने कहा कि धर्म के आधार पर एंट्री रोकना गलत है। क्या वो देशद्रोही हैं? तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के बीच अलकनंदा नदी पर एक पुल बनाया गया है और इस पुल के बनाने से सड़क मार्ग से
केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों की यात्रा जो है बेहतर हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। और बातें हमारी कर्म भूमि की, सिडनी में गैंग्स बहुत आ गए हैं और गैंग्स के कारण बहुत वायलेंस हो रही है, तो गैंग्स के कारण हो रही हिंसा उत्पात के लिए क्रिस मिन्स जो प्रीमियर हैं न्यू साउथ वेल्स के, उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि 2027 में होने वाले स्टेट इलेक्शन वो ऐसे माहौल में नहीं करना चाहते। इस पर पुलिस काबू पाने में नाकाम दिख रही है और प्रीमियर इससे खुश नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस की इलेक्ट्रिक कार्स के लिए प्यार है वो बढ़ रहा है। हर ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार मार्केट में आ गई है। चाइना से आने वाली कारें हैं BYD, ज़ीकर, GWM और MG, और ये काफ़ी पसंदीदा कारें बनती जा रही हैं। 1980 के दशक तक सिडनी में लाल रंग की लोकल ट्रेन्स चलती थीं जो काफ़ी आवाज़ भी करती थी और इसलिए उन्हें रेड रैटलर कहते थे। इसके बाद डबल डेक की स्टील बॉडी वाली के सेट नाम की ट्रेनें आई और इस साल उन्हें भी रिटायर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में पहला देश है जो अंडर 16 बच्चों के लिए इंटरनेट बैन कानूनी बनाने के लिए जाना जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया एक और बड़ा कदम उठा रहा है कि चाइल्ड अब्यूज, आतंक और घंटों ध्यान खींचने वाले एल्गोरिदम बैन किए जाएंगे ताकि लोगों को आदत न पड़ जाए इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताने के लिए। बड़ी टेक कंपनी ज़्यादा जिम्मेवार बनाना चाहती है सरकार, और अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे $100 मिलियन तक का फाइन लग सकता है। और आशा भोसले जी का कार्यक्रम समाप्त करने का समय अब आ गया है, और उन आशा भोसले जी हमें 12 अप्रैल 2026 को छोड़कर चली गई, और आज उनके जो गाने मैंने आपके लिए पेश किए उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। उन्होंने एक गाना गाया था, फिल्म थी उमराव जान, और उसके लिए ये गाना जो गाया उन्होंने अत्यंत ही पॉपुलर हुआ था। महक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूजे का ध्यान रखें। अंतिम गाना जो आपके लिए छोड़े रह रहा हूँ वो है फिल्म उमराव जान का। नमस्कार।